0: आकर्षण पैदा करो ताकि खरीदार इस औरत देना है, इस स्त्री देना है वस्तु खरीद सके। ऐसा भी दौर लंगे है, पैर दी जुत्ती स्त्री नु आख्या गया, जिससे मनुख समय अनुसार जुत्ती बदलदा रहा है, बदलो इसनु। और ऐसा निजाम काफी लंबे समय तक प्रचलित रहा है। स्त्री हमेशा मनुख दे हथों पुरुष दे हथों पीड़ित रही है, संताप ग्रस्त रही है। दूर क्यों जाओ? जद रावण दी कैद दे चों सीता नू रिहा करके लेंदा गया है, लंका नू फतेह करके मसला खड़ा हो गया सीता दी अग्न परीक्षा दा। ऐसा भारत दे प्राचीन समय तो एक ख्याल चले आ रहा है कि अग्न ही शोध कर सकती है, अग्नि ही हर वस्तु नु पवित्र कर सकती है। जैसे सोने नु अग दे पा के शुद्ध कीता जांदा है, धातुआ सारियां ही अग्न द्वारा शुद्ध कीतियां जांदियां ने। और कुछ पुराने वहमी मनुख ते भांडियां दे भी जितने चिर तक अग ना पा लेन उसकी शुद्धि नहीं मनदे, पवित्रता नहीं मनदे। अग्नि ही शुद्ध करेगी। लिहाजा हालात इत्थे तक चले गए, मनुख शुद्ध है विचारां दे तलते, मानसिक तलते, शरीरक तलते, ये शुद्ध है, ये पावन है। इसकी परीक्षा भी अग्नि ही करेगी। तो किन सीता दी अग्नि परीक्षा हुई। वक्त दा अवतारी पुरुष अग्न परीक्षा विच सीता नु पाउंदा है। लेकिन इस तरह दी अग्न परीक्षा कदी पुरुष ने नहीं दिती। क्या ओ भी मानसिक तल ते पावन है? क्या ओ भी शरीरक तल ते पवित्र है? इस दी लोड़ ही नहीं। क्यों? कि हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है, स्त्री ते अनंत काल तो गुलाम रही, महताज रही, पीड़ित रही, सताई जांदी रही। तो सीता नु इस तरह इतिहास या मिथिहास कहिंदा है कि अग्न परीक्षा देनी पई। बल्दी हुई चिता थे सीता नु बिठाया गया, और जिस दिन अग दे सीता नु झोंकया गया है, आज तक भारत दे स्त्री जिंदा जलाई जा रही है। और ये सिलसिला अजे तक भी जारी है। भाने अनेका हो सकते ने स्त्री नु जलाण दे, लेकिन जलाना चले आ रहे है। हैरानगी है किधरे दहेज दे नाते, किधरे पवित्रता दे नाते, और किधरे पुरुष दे गुस्से दा क्रोध दा शिकार होई स्त्री। जिंदा जलाई जांदी रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया दे आवाजां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज उठाई है पुरुष दी बराबरी दी। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती है। ईश्वर दा चिंतन ते आनंद पाण दा अधिकार जिथे पुरुष दा है स्त्री दा भी है। मान सम्मान जिथे पुरुष नु चाहिदा है स्त्री नु भी चाहिदा है। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ले जावे कि हर तल ते बराबरी। हर तल ते बराबरी तां परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री ते पुरुष दा तन अलग बनाया है, वक वक बनाया है। और जिथे तन दा ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन दा ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगां नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत दी धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इना विरोधी रंगां दे सुमेल नाली कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हू बहो विरोधी सुरां ते ही खड़ा है संगीत, किसे एक सुर ते किसे संगीत दी धुन नूं जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहीदियां ने। संसार संगीतमयी होवे, संसार सुंदर होवे, तो ये दो विरोधी सुर ने। जिस तेच इंज कह लईए, तीव्र सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत दा बोध रखण वाले इस गल नूं समझ देने, कुछ सुरां कोमल ने, कुछ सुरां तीव्र ने, और इस तरह सुंदर संगीत दा जन्म होंदा है तीव्र ते कोमल सुरां नाल। स्त्री कोमल है, तदी ता एक आलम ने कह दिता है जहूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात देश दुनिया देश संसार देश अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है, तो स्त्री करके। पुरुष इस रस नू विस्तार देंदा है, स्त्री एक रस है। रस फैल सके पुरुष चाहिदा है। इना दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलान एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है, वैद नू एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां दी खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी, पवन नू एक पासे कर दईए तो फुल्लां दी महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसे तरीके दे नाल दोहां नू अलग अलग कर दईए, स्त्री ते पुरुष नू, दोवें बेरैमक हो जाणगे और दोवें बेमैने हो जाणगे, लेकिन दोहां दा सुमेल कारज दी सिद्धि है। जैसे मला ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नूं साफ करदा है, इसे तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमयी है। बराबरी हकूक दे तल ते हो सकदी है और है। जे रब्बी रस माणन दा पुरुष नूं अधिकार है, स्त्री नूं भी उतना अधिकार है, लेकिन तन ते मन दी बराबरी परमात्मा ने नहीं की थी। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए ने। घर संवरदा है, सथिर रहिंदा है, महान आउंदा है स्त्री करके, पर घर दे बाहरों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लई पुरुष चाहिदा है। पुरुष दा शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है, स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम कम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है, और इस कोमलता दी लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री का गुण है और स्त्री करके है। थोड़ी बहुत तर्क जे स्त्री दे तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है। वो थोड़ी बहुत ते चाहिए ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुलना की रक्षा कंडे ही करते ने, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इस नूं प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहिंदे रहे ने, स्त्री नूं हर समय पुरश की सख्ती की लोड़ है, रक्षा लई, सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी। ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नू बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उना दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है, इस ते इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है, सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहिंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण दी आवाज बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर दी शांति, उस घर दा सुकून बाहर चला जांदा है जिथे स्त्री दा रुदन घर दी चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वक् वक् रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखदी है, उन्हों रामायण विच राम चित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते ने। जग प्रतबरता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस कही। इस तरह आख है, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि जगत देच उसके पति तो बिना होर कोई भी पुरुष नहीं है, वो ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनु अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने, धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतवंती, धन है वो स्त्री। कोशिश ते होई सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष दे चों देखे और पुरुष स्त्री नू देवी आखे, वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इक नू देवी दिखाई देवे और इक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जांदा है, घर हरि मंदिर बन जांदा है। पर इक नू भूत दिखाई देवे, इक नू डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने, क्योंकि घर च कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नू डायन दिखाई दे रही है और एक नू भूत दिखाई दे रहे। जीवन दा ढंग ना आया, एक दूजे नू समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहिंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे चौंदे ने, उथे चंगे माड़े इस्त्रियां दे च भी होंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने। ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने, ओ औगुण इस्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम इस्त्री दी तस्वीर कशी करदे हां, तुलसी कहंदे ने उत्तम के अस बस मन माही सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दिए उते इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है भरा है पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंदी है। अगां चल के कवि तुलसम कहंदे ने कि बिन अवसर भय तैरे जोई अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया बिना मौका मिलिया उसने बस अपनी असमत साम के रखी है वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है ये सब तो निखिद है। अगर ऐसा निखिदपना स्त्री ते लागू होंदा है तो फिर पुरुषां ते भी लागू होंदा है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकदा है स्त्री प्राप्त कर सकदी है। घर विच धन संपदा है वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है अद्धा अधिकार स्त्री दा है। अज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। ये गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नू अजे भी तैयार नहीं लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है मन अलग है जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे स्त्री वर्गा बनना चाहे मुश्किल और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके पुरुष जैसियां जुतियां पाके पुरुष जैसी चाल चल के पुरुष जैसे बोल बोल के और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी ते नहीं हो सकेगी पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां इन्हों बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी पर चमेली चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए पुरुष की तरह ही काम करना है पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने तो होया कि घर उजड़ गए। सियाने ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है तो घर वसदा है स्त्री करके ते जद घरां हो स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह तो घर घर ना रहा वो ते सिर्फ मकान रह गए इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई संतान भी टूट भज गई बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी मां दा प्यार नहीं मिलिया मां दी गोद नहीं मिली ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं कीती तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए उथे औलाद भी सखणी होई। धन ही धन रह गया जो जड़ है और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी औलाद दी उतनी चिंता ना की थी ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ, ਘਿਰਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਬਸ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲਾ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੰਡਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਪੂਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੌਣਕੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੇਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖਿੜਨੇ ਸਨ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪੁਰ ਰੌਣਕ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਣ ਇਸਤਰੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਗਿਣਦੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮਹਾਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ, ਹਰ ਮੇਰੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਰਾਮ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੋਰੀਆ। ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ अपनी सुरक्षा लई सुरबीरता पैदा हो जाए और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवे हमराई ने अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन विच वंडी हुई है। पशुआं नू लईए, पक्षियां नू लईए, बनस्पति तक नर और मदीन विच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नू देखिए, अस्तूल जगत नू देखिए, कुछ नर है, कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे ए दो ने और दोहां दे ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नो बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नू समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष, दोहां दा वजूद दोहां करके है। इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, इस 60% पुरुष है, 40% इस देच मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है, पर 40% इस देच पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नू अर्ध अंग आख्या है। एक गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लै जा अर्थ समय दे नाल बदले, नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहण देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चै और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है, तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष की कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावत ने, हम जिन्स तो प्रभावत ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो यह शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैन है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नू सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है, तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है, तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उथे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबलौंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो, ਤੇ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਖੇਡ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤਲ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਸਥੂਲ ਤਲ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿਵਾਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਟਕੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਟਕੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨਹੀਣੀ ਹੈ, ਤਰਕਹੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ ਅਗਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਧਾ ਟੰਟੋਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੰਧਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਅੰਧੇ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, भावना मन नू टिकाण दे बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लेंदी है, क्योंकि टिकाओ है। भावना मन नू टिका के रख दी है, श्रद्धा मन नू टिका के रख दी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर दे नहीं बैठ सकेगा, तर्क उदे पैरां नू गति देंदा है, भटकांदा है, चल। इस वास्ते कहंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रधान रखी है, ए अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दिए। पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है, प्रबल भावना करके घर वसया रहिंदा है, और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैल दी जांदी है, वध दी जांदी है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर। स्त्री दे अंदर स्वभावक जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है, स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है, और इस ईर्ष्या करके ईर्ष्या करके जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दे आ है बहुते घर मर्दा करके नहीं टूटते, स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टूट जाते ने। स्त्री दा स्त्री नू बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूह देराणी ते जिठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नू सहन करन बर्दाश्त करन। यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने, और एशिया देच बहुते परिवार कल कलेश दे दल दल देच फसे हुए ने स्त्री दी ईर्ष्या करके। पर पुरुष दा तर्क फैलाओ इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार नू जन्म देंदा है, तो पुरुष दा जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर विच कलेश मचाना स्वभाविक हो जाता है। अहंकार ते जेलसी इसका टकराव किसी वक्त स्त्री ते पुरुष का टकराव हो जाता है, और दूरियां नू जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी हवन सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले हवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नू स्वर्ग बना सकदे ने, संसार नू स्वर्ग बना सकदे ने। प्राचीन जमाने तो लैके हुण तक धार्मिक जगत दे शायद कुछ इना ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है, और नरक दी द्वारी कहंदे रहे ने साडे देश ते आदर्श इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश ते किसे हद तक इस नु शूद्र मनिया गया है, ये जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करन दा अधिकार भी नहीं दिता, और इसनू ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी दी गल है महाकवि तुलसी भी इसनू पशुआं दी श्रेणी विच खड़ा करदे ने, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਦੁਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਰਾਨਗੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਕਿਧਰੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਦੁਆਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਰਮੋਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਗਤਰਾਸ਼, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕਵੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਕ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਕਸ਼ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 400 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 600 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਨਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 400 ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ 600 ਬੇਗਮਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੀ, ਆਪ ਫੂਕਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਸ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਵਿਤਰੀ। ਸੰਗਤਰਾਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਠਲਾਇਆ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਾਕਈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਐਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸੰਤ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਨੇਊ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਚੋਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ।
1: ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਤਵਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਕ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ

जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन बधाई कह सको बे अंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरिता

परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहिब भाई बख्शी सिंह जी होर ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नूं बख्शिश कीती है उस दी विचार असानू सरवण कराई। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इन्हां दो श्लोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिमें गुरमुखा ने हुक्म किया सी पिछले साल भी कि श्री ननकाणा साहब जी का साका भावा वो कई बारी सुना भी चुके हैं, आप जी ने कैस राही भी सुनिया है, पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का वो पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जियां कणौणियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराण दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहिब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्हां ने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी

अब चल नीव उसार खलारी, कल युग पीढ़ी सोडिया, अब चल नीव उसार खलारी, युग युग सतगुर

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दी इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदों जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देण तो बाद भी ना समझे, ते उसनु कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उनु समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब, आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई ता भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देसा सोडियां होरस आजारना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी। समा थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकदा है, कृपा कर दिया जी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप कृपा करके विच वरतो, अपने पवित्र बचना दी विचार करा लो। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे

एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर ही ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

0: अपनी उस बच्चे दी भावना नू भाग लाया है।
1: सुंदरता मंदर तन होवा, अखल विकारन को तब खोवा।
0: केवल तन अरोग नहीं, गुरु ने मन नू भी अरोग कर दिता ते ए नौजवान उस बेरी दे थले बैठ गया है।
1: प्रभु कृपा अस साया तारी, जिससे होए न सके चिनारी।
0: उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा वरती, सतगुरु दी मेहर दे नाल ए आरोग हो के इत्थे बैठ गया। प्यारियो, इस तो अगे जदों ओ
2: सतनाम करता पुरख।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जो अमरी बेद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।